0: दोस्त मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस नाते पाक को जिस अंदाज में पढ़ा है इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फिर भी दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब की ये नाते पाक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी नई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
1: The coast to the hinterland, from our riverine communities to the Rupununi, this is the Voice of Guyana, broadcasting on 102.5 FM and 560 AM, relaying nationwide on 95.1 FM in Lethem, Mabaruma, Madia, Aishalton, Bartica and Oriela, and 95.5 FM on Radio Essequibo. You can also hear us on 97.1 Bina FM in Anai and in Linden Region 10 on 95.5 FM. Wherever you are, the Voice of Guyana has you covered, informing, educating, and connecting the nation. We are modern, digital, and people-centered. Log on today to ncnguyana.com and stream any of our stations. One powerful national radio network from Guyana to the diaspora. Your story. Stories, your voices, your future. The Voice of Guyana, the nation's station.

0: अल्लाह ताला जल्ले शानहू और उसके फरिश्ते दरूद शरीफ भेजते हैं नबी पर, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो।
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम।

0: पैदा हुए, शाखाए रोजे जजा सल्ले अला पैदा हुए, अर्शो कुर्सी झुक गए तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताजीम अहमद के लिए।
1: सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद,
2: रब्बे सल्लिम।